राज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Biblical best pasanda.
1: Biblical best pasanda.
2: Don't miss Southall Travel's special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southalltravel.co.uk today.
0: Don't forget, you've got another opportunity to win those tickets with Amit Jana following this show, all right? So stick around for that. All right, have a listen to this voice. Tell me who this person is.
3: So, jis din main taiyar hoke airport jaati hu, ye soch ke ke aajkal media har jagah hai, to mujhe taiyar क्या एक दो बार स्टाइलिस्ट को बोला लाओ अच्छे कपड़े ज्वेलरी बोला लुक बनाओ एयरपोर्ट लुक मैं भी तैयार होके जाऊंगी बिकॉज देयर ऑलवेज देयर फोटोग्राफर्स एंड यू नो अच्छा फोटो आना चाहिए.
0: Who is that? 07925-700-272. Listen to it again.
3: तो जिस दिन मैं तैयार होके एयरपोर्ट जाती हूँ ये सोच के कि आजकल मीडिया हर जगह है तो मुझे तैयार व्यार होके क्या एक दो बार स्टाइलिस्ट को बोला लाओ अच्छे कपड़े ज्वेलरी बोला लुक बनाओ एयरपोर्ट लुक मैं भी तैयार होके जाऊंगी बिकॉज देयर ऑलवेज देयर फोटोग्राफर्स एंड यू नो अच्छा फोटो आना चाहिए.
0: Who's going to give me the correct answer first and who will be my hero of the hour?

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए